0: गंगा दूध चाले तिसे खरा दरावना बारो गुंत छोटावना बारो गुंत छोटावना
1: हे मन हर जीत्याए तो एक मन एक चित

राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सिद्धि मन वजियां वधाई राग रतन परवा।

चेता मन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रश्य आर्य आए तब देख।

सेवा करे जिसमें हुक्म मनाए सी हुक्म मनाए होए परमानता खसमे का मैल पाए सी खसमे पाए सो परमान चिंदा सो फल पाए सी।

0: होए आस के ना किए जे लिखे
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्ता जाए नानक दोवे कूड़िया थाए न कई पाए पौड़ी जिस वेस पाई है सो साहेब सदा संभालिए जुत की तपाई है अपना साकाल।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह

बंधन काट मुकत गोर कीना, दुख सुख करत जन्म फोन मुआ, चरण कमल गोर आश्रम दिया, अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकर सत गोर निस्तारा, सौदा इकत हट है साहु सत गुर पूरा, औगण लै गुण विकण वचन दा सूरा।

शंखमोति चूरा वेद कति बहुबाहरा गौर शबद हजूरा वेद कति बहुबाहरा गौर शबद हजूरा सो कहौ टल गौर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठे आसो ही है सब ना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास

संत जना कर मेल गुरबाणी गावाइया बलराम जीओ। बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया गया करोद ममता तन नाठी

वर पाया पुरख अगम अगोचर साध नावतान बाल सखाई नानक किरपा कर कै मिले विछुड़ कदे न जाई।

विछोड़ कदे न जाई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राग सूही महला चौथा, शांत घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर पुरख मिलाए, अवगण विकणा गुण रवा, बाल राम जियो, हर हर नाम त्याए।

मत पथ दरखा स्वाहि गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहज दाकार जियो श्री ननकाना साहिब आते पूर्व जवानियों गुर कामा ने बिना को पंथ को छोड़िया गया है।

जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जान हो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थपे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड़ दिखे दिख खाई माया मह परम पै भूले सुतदारा प्रीत लगाई

और तेरा मर्तबा, रंग बरंगा नेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला, तेरे करना दुदाई दुद कर, मान मत ते जे अपना आप जर।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्यावहु संत हो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाण तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाण तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाण जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाण हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तन तूटी जम की फासी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंत तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेत सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पांक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाली मन एक न चेतस मूड मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्राणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाहीं विसरिया आसा महला पंजवा
ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਾਪ।

दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सवैयन पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो

सज्जन पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालस जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परोसा दान सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाह।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान

ज्यों जन हो त्यों राख, हर प्रभ तेरे केते गनो असंख, अवगण मेरे असंख अवगण खते फेरे, नित परत सद भूलिए, मोह मगन बिकराल माया, तौ पर सादी भूलिए, लोक करत बिकार बिखड़े, प्रभ नेर हूँ ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारहु, काड पव फेरिया। असी खते बहुत कमाव दे, अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लै हो, हों पापी बड़ गुन है गार। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास ना परियारे। दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित भवन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेविए, एहन ससहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होए सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह,

0: मर्तबा रंग परंगे अनेक ना जपन करतबा नियांद्र दियो सब किस जान ला सब किस तेरा बस तेरा कर पला तेरा कर आनंद बधाई तुत कर मन महता तेज अपनाया पजार सर्व कला भरपूर ऐसे जतकता नानक दसन दास उदया गए बिनमता।
1: ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦੇਵ ਸਰਾਧ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ

कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम जाने मेरा। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए, नानक की प्रभ बेनती

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरनाई। सुख टल गुर सेवी अहनस सहज, दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख। ओ सिफत।

साहेब जी तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिन स होए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए जब ते दर्शन भेटे साधु भले

पुरख विधाता पाए अब मोह राम जसो मन गायो भयो प्रगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो।

मैं रोग मिटे कृपा ते। जमते पए विभाका गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुरबाणी। गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुरबाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया, पार मस्तक रखिया, परमेश्वर है आत्म रखिया, गोपाल स्वामी तन चन रखिया, जगदीशर है सर्व रखिया, गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भक्त बशर अनाथ नाथे, सर नानक पुरख उचित है। बिलावल महला पंजवा, ताती बहु न लगई पार दिन सरनाई। चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई। राम नाम औख दिया कल बिलाई रहाओ, राख लिए तन रखन हार, सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पई। प्रभु पे सहाय सुहिला रागौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखिया करते का होए विचारो, चित कर गावो सोहेला सिवर हो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरभौ का सोहेला हो, बारी जित सोहेला सदा सो।

0: दंत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा नाम दिवायो, सर्व सुख नाम डाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात द्वय दाई दाया, खेलै सगल जगत, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ

0: सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा केला करोड़ सच्चा है सब तान सच्चा है सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पाशा नानक सच तैन सच जो मर जमे सुकाच नकाच महला पहला
1: वड़ी वड़ियाई जा वड़ा ना वड़ी वड़ियाई जा सच ने आ वड़ी वड़ियाई जा निचल था वड़ी वड़ियाई जाने आला वड़ी वड़ियाई बुझा सब पाओ वड़ी वड़ियाई जा पुछना दात वड़ी वड़ियाई जा आपे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्ब रजाई महला दूजा
0: एह जग सचै की है कुठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समायल एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना भाणे

कूड प्रजा, कूड ससंसार, कूड मंडप, कूड माड़ी, कूड वैसनहार, कूड सोना, कूड रूपा, कूड पैननहार, कूड काया, कूड कपड़, कूड रूपार, कूड मिया, कूड बीबी खा पोहे खार, कूड कुड़े ने हो लगा विसरया करतार।

0: सेब का भाई है, सेब का भाई है, मत थोड़ी सेब का भाई है।
1: पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है, मत थोड़ी सेवक पाई है, मत थोड़ी सेवक।

0: संसार अगर सागम तुलहा हर नाम करो मुख पाया जग जन्म मरण पक्का ये आई है प्रतीत प्रतीत है आई जन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोबर लालच काम क्रोध के वृथा गई अब लोक के ब्रह्म परम सब छुट गया देवे दृष्ट कारण कर्ण सत गुर गुर सेव अलख कत जाके श्री रामदास तरन तरन जिन्हों बात निश्चल त्रु जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडल नि सुरजे सत संगत परमानंद करो मुख मचा सिरे गुरु साहिब सब पर मन बच क्रम सेविए सच्चा।
1: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ कैद मांज शोध से दही पाद खाए जियो देख रूप अतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंदकार खेल पाहे जियो काल कलाम हुकम हाथ कहो कौन मेर सके ईश बम ज्ञान ध्यान तथ्य चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित भेख तरयो हर नाक शरयो नख बदार जियो शंख चकर गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन तहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
2: पीत बसान कुंद दसान प्रयास सहत कंठ माल मुकट शीश मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अलख गम खेल किया अपने चाहे जियो कथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहा समाए सुत है सिद्ध।

नाम सार ही ए तार तज विकार मन गे अंध सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुरु केहा मान निज निदान सच जान मंत्र है निस्बासर होए कल्याण लहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो छाड़ तो होमे का फंद काट सा संग रत जियो देहो गेहो त्रे स्नेहो चित्त विलास जगत त्यो चरण कमल सदा सेहो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ए तार तज विकार मन गेन श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।

0: बड़ा तमाशा। किया खेल बड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तो जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। महाने ब्रह्माद क्रुद राधक, काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइय परमारथ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड मेल तमाशा, वाहा गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने है, शिव बिरंच धर ध्यान नितह जिस भेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रस ना रस है। श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित है बस।
1: गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध समत समारण को। फुन ध्रम तुजा फैरंत सदा, अग पौंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना बिचारन को। हर नाम बहुत बड़ो कल में, भाव सागर पार उतारन को। संतत ही सत संगत संग, सो रंग रते जस गावत है। ध्रम पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिवतार न तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है।
2: जिह सतगुर सिमरंत, नयन के तिमर मिटे खिन। यह सतगुर सिमरंथ, हृदय हर नाम दिनो दिन। यह सतगुर सिमरंथ, जिय की तपत मिटावै। यह सतगुर सिमरंथ, रिद सिद्ध नव निध पावै। सोई रामदास गुरु बलपन, मिल

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर था अत बड सुपर सदा सब बिदरत नागर संत।

करण कारण समरथ स्वामी जाते वृथा न कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया करहौ कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावै सिमरै सदा गोपाला वड्डे भाग रतन जन्म पाया करहौ कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावै सिमरै सदा गोपाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम तत् सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा।